सकती है, नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहां से है? कोई और? स्पेशल किट बना देते चोर किट होते हैं। तो आपके पास भी कोई छिपा हुआ चोर किट तो नहीं है? चेक करो, नहीं तो माया आई कहां से? ऊपर से आ गई? अगर ऊपर से भी आ गई बड़ी खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो। तो माया ने कोई चोर के गेट तो नहीं बना के रखा है? और गेट बनाती कैसे है वो मालूम है? आपकी जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोरों

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

Síganme, la Gaia. Acha. Api. Sarete.

0: एक सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। क्योंकि यहां तो वायुमंडल भी है लेकिन अपने अपने स्थान में रहते। सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। ये अभ्यास कर क्योंकि बाप दादा ने बता दिए जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये एक सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना और अपने अपने स्थान पे रिपोर्ट टीचर को लिख के देना। फिर टीचर्स द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है सभी के क्लासेस में ये होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप सफल हुए उससे पता पड़ेगा कि आप किस योग्य।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये भी विधि अच्छी बनाई है, हर सोन को चांस मिल जाता है। एक तो सेवा का, यज्ञ सेवा का, एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता भाव तो याद आता ही। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा

Fantastic.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्यवन
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बच्चों के निमित्त पर निस्वार्थ विश्व सेवा को देख
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Disembabu.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

5 i advertite.

परिवर्तन कर सकते।

इस कभी

0: रतन बना लीजिए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कभी नाराज नहीं होना, ना अपने ऊपर, ना कोई आत्मा के ऊपर। खुश रहना, ऐसे तो नहीं सेंटर पर जाके खुशी का एक मास खजाना जमा रहेगा, फिर धीरे धीरे खत्म तो नहीं होगा ना। खत्म होगा क्या? होगा सदा साथ रहना। अच्छा धन मन धन बाप क्यों दे दिया ना, दे दिया है। अच्छा दिल भी दे दिए, दिल बाप को दिए। अगर दिल दे दिए तो आपके पास दिल आपके लिए नहीं है, बाप जैसे डायरेक्शन दे वैसे। तो बताओ
2: फिर तो
1: कोई आत्मा के आगे वचन नहीं कर रहे, परमात्मा के आगे वचन दे कभी।

0: Pech.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं, लेकिन एक आश ये पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सीकर में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व के निवारण करने वाली हो तो क्या स्वयं के छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, तो मास्टर मुक्ति दाता तो हो ना, लेकिन क्यों हूं, इसको समाप्त कर। हर एक समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। आज समस्या को समाप्त, शब्द कोई समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Taste the tarts. Oh, scale.

छोटे छोटे वीर संकल्प है, लेकिन कभी भी धोखा समय पर दे सकते, इसलिए व्यर्थ को भी कब करूं। टाइम क्योंकि इस शिवरात्रि पर बाप को कोई सौगात तो देंगे ना, देंगे। हाथ उठाओ, तो बाप दादा यही सौगात पसंद है ना, पसंद है। हाथ उठाओ, पसंद है तो सब पास हो जाएंगे, पसंद है तो पसंद चीज़।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Puta.

seek.

चोट

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, क्या कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ही। लोग आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसीलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा चाहता है एक एक बच्चा, खुश दिमाग खुश नसीब दिखाई दे चेहरे से चलन से, क्योंकि इसके लिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी से लक्ष्य रखो, जैसे अभी ये 75 वर्ष के कारण सबको
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Shopee.

Swastika.

μπορώ να το πάνω. Και ο κα...

समय सफलता

समय का सफर।

उसकी डिपार्टमेंट ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो और सर्वात्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। ऐसे समझदार

好き。

लेकिन स्वप्न

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Remdele. Coi bici trăchea che cea te chiamante. Trea caro, gârpa caro. Rem caro, mărsi, mărsi.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा, कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना, करो नहीं, लेकिन कर सकते हो। ऐसे ज्यादा में ज्यादा ग्रह

से नहीं मानस से। आर्डर करो सुख्यम वतन जाना है। तेरा गाड़ी वतन में जाना है। तो तीनों लोगों में जब चाहिए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को सबसे समीप रतन वही लगता है जो सफाई और सच्चाई में दिल साफ और सच्ची दिल वो बच्चे चाहे कितना भी दूर हो लेकिन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दुनिया के

切。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वरूप में पर रही

0: सेवा चाहिए, वाणी की सेवा। तो बाप दादा ने देखा कि चारों ओर धूमधाम से चल रही है अपना ओलेना भी निकाल रही हूं, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। Okay.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: मनसा से भी आत्माओं को आकर्षित कर आगे बढ़ा सकते। संबंध संपर्क मेला सकते। मनसा की सेवा अभी कम है, लेकिन अभी से शुरू करेंगे तो अंत में कोई रह नहीं जाएगा। कभी भी अगर फुर्सत मिलती हो तो फरिश्ता रूप में जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा कर सकते। फरिश्ता बन के ये अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय

0: baby. ऐसी लहर तो कके अशांति की बीच बीच में भी पड़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो तो कके लहर पड़ेंगे, इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए। लेकिन फाउंडेशन पक्का हो, अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने हो। कभी कभी कभी ब्राह्मण बच्चे भी अपना प्रभाव डालने लगते हैं। बाप के तरफ कोई भी सेवा में बाप के तरफ आकर्षित करो, पर्सनल नहीं। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करते तो उसका पुण्य नहीं बनता। अच्छा,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: I should.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा वो मेरे बाबा वो मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरा संसार हो, बहुत मीठी मीठी बातें करते और दो चार घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ गया, बात नहीं आती भूत आता। फोटो है देखो, एक यादगार भी है भूतनाथ, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहां से आया कैसे आया और कैसे भगा रही है, ये खेल भी देखती रहे। कोई तो घबरा कर भी दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको संजीवनी बूटी कोई द्वारा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Porque Ponche.

Sucks.

सकती आप सब।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

बाबा मेरे हर एक बच्चे के मन से देखो तू कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा हर एक के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा क्योंकि ये प्यार बाप और बच्चों का अलौकिक प्यार जन्म

나 멋있길래.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उससे रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि ये बात तो पहली वाली तो वो थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीच वही होता है। सब रूप परिवर्तित होते हैं, उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अटेंशन रखो दो बात का, एक सच्ची दिल सच्चाई, अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से क्या है, गैस का गुब्बारा बढ़ जाता है। बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है। इसीलिए मानता था। वो सुन नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा का था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर लाइन में डिस्टर्बर नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। जो बाप दादा एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, वो मिल नहीं सके। लाइन क्लियर ही नहीं है, क्लीन नहीं है, कट ऑफ है। तो ये जो प्राप्ति होनी चाहिए ना, कई बच्चे कहते हैं, कहते नहीं है तो सोचते हैं, कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी मिलता, बड़ों का भी मिलता, बाप दादा का भी मिलता, हमको कब मिलता। कारण क्या, बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेने चाहे बाप दाता के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार नहीं है। बाबा का जी हाजर, बाबा का लो दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी होगी। लेकिन ये दो बातें सच्ची दिल साफ दिल चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भी करते हैं। साफ दिल सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन सदा जी करो, क्लियर है और क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बन क्लियर नहीं करने दे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी बाप दादा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा हर बच्चे को बेफिक्र बादशाह वाले भी

को तेरे में बदलने में। बहुत

coqueteo. Mira, papá. संकल्प कर ले।

0: मेरा क्या रहा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: तो ये अभ्यास भी करूँ।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि गाना का ईशा और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए फेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि फेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द को बीज को

अभी जल्दी जल्दी बाप की पर्ची

0: चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी वार्धक्यता का झंडा सबके दिल में ले रहे, तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे हो?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब दादा सभी बच्चों से यही चाहे समान बनने का दिखाओ, सदा संकल्प में समृद्ध समापति समारोह मनाओ। क्योंकि व्यर्थ समृद्ध बनने नहीं देंगे, और जब तक निमित्त बने हुए बच्चे सदा समृद्ध नहीं बने, तो विश्व की आत्माओं को समृद्धि कैसे दिलाए? सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों के भिखारी बन चुके, ऐसे भिखारी आत्माओं को ये समृद्ध आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो, बच्चे।

0: कोई मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Not अपनी धारणा से प्रभाव डालते हो तो आप किसी वन की मर्स जमा हो गए।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक ऐसा सर्विस तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छी अच्छी है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी की अनुभूति कराती है।

जीवन की मर्यादा तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे रूहानी बनने में भी शक्ति बढ़ने वाली है। और दूसरों को भी शक्ति देती है। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प मनसा सेवा के निमित्त बनते रूहानी बोल स्वयं को और दूसरे को

0: वर्तनी आत्मा बन जात। रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं। दूसरों को भी कर्म योगी बनाने की सैंपल बन जाते। जो भी उनके संपर्क में आती है वो सहज योगी कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बच्चे बड़े चतुर हैं, चतुराई सुनाओ। क्या कहते हैं, ऐसा काम को चलाना था ना, इसीलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन करना पड़ा, कर लिया। लेकिन चैन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। तो चतुराई नहीं करना, पाप को भी बहुत री जाती है, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें, बाबा आप तो रहम दिलो ना, आप तो किमिया के सागर हो ना, बाप को भी याद कराती है, तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो। सुस्ता से सुना के कदम एक अखियर पका करते हो, सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से स्व को परिवर्तन करके फिर सुनाओ। रिजाते बहुत है, आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं, आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़े चतुराई करते। अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, करना ही है के नहीं करना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

しい。

0: பரம்தாம்.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जन्म भी

विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार जन्म भी साथ है, और रहते भी कहाँ हो अकेले या साथ में, हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के कंबाइंड कंबाइंड रहते हो ना, साथ जना

0: बचाओ, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है, और साथ ही चलने वाले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Passion.

0: Shut Malco. Vibration pahunche vayu mandal bane. Jab science ke sadhan. Agar. Thanda vatavaran kar sakti hai. Sabko mehsoos hota hai. वायुमंडल अनुभव करा सकती है, सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप सुख स्वरूप शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? ये रिसर्च करो, सिर्फ अच्छा अच्छा किया
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा तो आज हर बच्चे को देख यही जैसे बाप दादा ने दो बातें पहले ही अटेंशन में दिलाई है, क्योंकि संगम समय अचानक समाप्त होना है, एक समय दूसरा संकल्प दोनों की
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साधारण अज्ञान ने आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का ये संकल्प है कि इस शिवरात्रि पर या एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह पीछे दिनों में अपने परिचित अपने मोहल्ले वाले अपने दफ्तर के कार्य करने वाले साथी इन्हों को संदेश जरूर दो कि अगर बाप से वर्षा लेना है तो ले लो, ये संदेश जरूर दे दो। आपके मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं रहे जो कहे कि हमको अभी लास्ट में क्यों संदेश दिया, थोड़ा पहले तो देते तो आप भी कुछ बना तो लेते, नहीं तो लास्ट में तो सिर्फ आओ प्रभु कहते रहेंगे। आप आए, हमने नहीं पहचाना, वो लेना देते रहे। तो इस शिवरात्रि पर किसी भी विधि से ऐसा प्रोग्राम आपस में बनाओ जो पहचान वालों को संदेश मिल जाए, फिर राव उन्हों की तकदीर। लेकिन आपने अपना कार्य पूरा किया तो हर एक को ऐसे किसी भी रूप में उन्हों को संदेश पहुंच जाए। फिर जैसी नेचर, जैसा स्वभाव, उसी परमान अपने अपने तरीके से संदेश जरूर दो। बड़ा दिन है, खुशखबरी आपको सुनाते। तो ये ओलेना निकल जाए, अभी भी प्रोग्राम करते हो तो क्या कहते हैं, ऐसे भी कहती है अभी भी कि हमको तो अभी पता पड़ा आपने पहले क्यों नहीं किया। इसलिए बच्चों का, बाप दादा का जन्मदिन है, जो पुराने है वो अपना जन्मदिन कौन सा मनाते, शिवरात्रि मनाते है ना। तो इतनों के जन्मदिन पर ये संदेश देने की मिठाई बांटो, ठीक है? बांटेंगे, बांटेंगे। हाथ उठाओ, कोई भी वंचित नहीं रहे किसी भी विधि से। फंक्शन करो या पोस्ट द्वारा भेजो, लेकिन कोई रहे नहीं, किसी भी साधन से उनको संदेश जरूर पहुंचा, वो आप आपस में रहकर तीन चार तरीके बनाओ, फर्क वाले भी अपने सभी कनेक्शन वालों को शिवरात्रि के महत्व का संदेश जरूर दे। पसंद है आज?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Like.

0: 什么没有的？看呀，干嘛呀？看呀，咯噔。Isliye ye bhi attention rakhna. Bahut seva achhi kar rahi hai. Phal bhi achha mil gaya.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आकर के दृढ़ संकल्प करें। song.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मधुबन निवासी अर्थात करम में मधुरता और वृत्ति में बेहद गहरा मधुबन निवासी अर्थात एक्स्ट्रा गिफ्ट के अधिकारी गिफ्ट है ना, कितने निश्चिंत हो अपना ड्यूटी बजाई और मौज में रहे। मधोगी करनी है, जिज्ञासों को संभालना है, इसे तो फ्री है ना। तो मधुबन निवासियों को स्पेशल अटेंशन रखना है कि हमें चारों और याद के पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने, तो कम से कम 4 घंटे से होना तो ज्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा। ये तो आपको अनुभव है अच्छी तरह से। मधुबन का वाइब्रेशन चाहे कमजोरी का चाहे पावर का तो नहीं, बहुत जल्दी फैलता है। अनुभव है ना, मानवों को अनुभव है जो मधुबन में सुई भी गिरती है ना वो भी आवाज पहुंचता है। मधुबन निवासियों की तरफ सबका अटेंशन होता है। मधुबन वाले समझो विजय प्राप्त करने और कराने के निमित्त मधुबन की महिमा कितनी सुनते हो ना, गीत भी गाते हो ना मधुबन के, तो मधुबन के दीवारों की महिमा है या मधुबन निवासियों की महिमा, किसकी महिमा है? आप सब की है ना। ऐसे अपने जिम्मेवारी समझो, सिर्फ अपना काम किया ड्यूटी पूरी की ये जिम्मेवारी नहीं। मधुबन का वायुमंडल चारों ओर वायुमंडल बना, मधुबन निवासियों को सदा दासी बनना, अर्थात अनेक गिफ्ट के अधिकारी बनना। हम देखो इस टूल गिफ्ट भी बहुत मिलती है ना मधुबन को।
2: जाएंगे तो बहुत
1: और कितना सामान मिलता है अगर मधुबन वाला कहाँ भी जाता है तो किस नजर से सभी देखते हैं।
2: मतलब
1: मधुबन वाला है, मधुबन वाला है। तो इतना अपना सामान सदा
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

하손 게 허스야디.

संस्कार। तुम मेरा बनाए, तुम मेरे का तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया, मेरा तो जगह।

मेरा नहीं कह सकते। ये पास्ट जीवन के संस्कार शूद्र जीवन के संस्कार।

primera.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sass.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सफलता।

असफलता की बात को भी सफल

0: लगा, सफलता स्वरूप ये आज के दिन का बाप दादा का वरदान। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये सदा स्मृति में रख। तो जो भी कुछ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक बाप दादा को अल्लापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ती है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी दिल छोटी नहीं करना, बड़ी दिल बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या? बड़े दिल बड़ा बाबा है ना, तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल सच्ची दिल साफ दिल हर मुराद हासिल। जो भी किचरा आवे ना, किचरे की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचरा उड़ के आ जाता है। लेकिन किचरा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचरा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी अगर मन में कोई भी बात रख ली, निकाला नहीं, तो वो वृद्धि को पाती रहती। बस बाबा, मेरा बाबा हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा, बच्चा भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, ये हो नहीं सकता।

0: for det, Neymar. Då babblar länge. Pjär kera sise. Essa band kera gå. Joel Neysa.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दादा खुश है, हाथ उठाने में होशियार सभी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी जो भी आए बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा, क्यों कैसा भी है कोई

sé qué decir. Mira, mamá. Islie. Pap Kavi a ti pier. Srapap tada. Ek bat. Firse. Yad dilara ki apna chehra sada khushnuma khushi mein chamakta rahe. Baat chali jaye lekin khushi nahi. संगम योग की खुशी परमात्म गिफ्ट है तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए जो होली बात होली खुशी नहीं जे परमात्म सौगात खजाना खुशी बाप दादा सदा कहते हैं ये सलोकन सदा याद रहे खुश रहना है और खुशी बांटनी जितने बांटेंगे उतने बढ़ेंगे और खुश नेमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिले तो आज होली की दिल खुश मिठाई है खुशी सबने खाई सदा खाते रहना इसमें कोई बीमारी नहीं होगी अच्छा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: व्यक्ति भी है मटेन मटे मटे में जाती, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई कोने से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, सने नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छे, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता हो, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा सने शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भीज जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा। ये भी व्यक्ति की क्यों सेवा की विशेषता का दाता कौन, वो व्यक्ति या बाप देता है, कौन देता है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है और ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते, कोनों को देखते, सेवा को देखते, वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है, बिना बाप के बनने के उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है। क्या अज्ञान से लिया आता है वो विषय।

0: ध्यान पढ़ने वाला कौन? तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता या दाता अच्छा लगता? तो लेवता के पीछे क्यों?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: बच्चों से कभी भी दूर नहीं रह सकते। जैसे बच्चे बाप से दूर नहीं रह सकते, तो बाप भी बच्चों से खुश है, मुबारक भी देते हैं कि अभी हर एक समझे कि मैं इस
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Oscar.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति का अनुभव कर रहे। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का सा...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

Gelati.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा पूछते हैं, वो तो देख लिया बरकर देखा खेल, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ खेल देखा बरकर देखा या अपने मूर्ति कला के खेल में बिजी रहे कि सब समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी बाजी और दिल कला की उसमें इतना इंटरेस्ट रहा। देखो बाप दादा की मदद से कई बच्चे गुप्त योगी है, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को मदद भी बहुत मिली है, लेकिन जो बच्चे अपने श्रेष्ठ कार्य स्वयं भी अचल साखी रहे और वायुमंडल में भी ऐसे समय पर जैसे स्थूल सहयोग देने वाले चाहे गवर्नमेंट

0: وسط رجعي ونوخ يا أنا الشيء لكن بليتو ما نمشي عندي جاي شدي جاي سامنا كرنك استول كيسات سوكيام سيوك ब्रह्मा नहीं दे सकते और कोई नहीं दे सकता, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो रियल सल है, रियल तो आने वाले उसकी रियल सल आपको भी पाप या समय कराना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम
2: सेवा द्वारा सभी को अनुभव है। जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा वाक कर्म द्वारा भी सेवा करते हो, उसकी प्राप्ति आत्मक खुशी मिलती है। तो चेक करो, सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है? अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथारथ सेवा नहीं। कोई ना कोई कमी है सेवा में, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुश निमा घिरा हुआ रूहानी गुलाब खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगे। चेक करो, सारा धन सेवा की, लेकिन सारे दिन के सेवा के तुलना में इतनी खुशी हुई या सोच भी जारी चलते रहे, ये नहीं ये ये नहीं ये, और आपके खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर, दूसरा सेवा साथियों पर, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं के वायुमंडल खुश हो जाए। ये
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: वर्तमान समय

0: Usra.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले, पाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा चाहे संबंध संपर्क में, फैमिली लाइफ वालों, आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वालों, फैमिली का अर्थ होता है एक दो के जानना और एक दो को समझ कर चलना, परिवार में भी ठीक हो और चार निश्चय जो सुनाए थे, चार ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो, सारे परिवार का प्यारा होगा, कोई का प्यारा कोई का नहीं, नहीं सारे परिवार का प्यारा। ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए, प्रजा तो बनती जाएगी, साधारण प्रजा, लेकिन अभी नजदीक वाले वारिस क्वालिटी बना।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जब मेहनत है वह मोहब्बत।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई नैन अंदर में समझे, हाथ उठाने में शर्म आवे, तो भी तो अचानक होगा, उस समय पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। अभी चेक करो, कुछ भी अचानक हो जाए, हलचल हो जाए, तो इतनी शक्ति है जो स्वयं
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

तो आजकल बाप दादा ने देखा है कि पौधों के अशुद्ध संकल्प कम चलते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प आते जाते हैं। तो इस एक जन्म के मूल्य के अनुसार व्यर्थ संकल्प अभी फिनिश होने चाहिए। संगम योग के

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हर एक वर्गीकरण से ऐसे कोई स्पीकर तैयार हो, आप टॉपिक देते हो, उस पर भाषण करते हैं, नहीं मुझे ये करना है।

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट अभी भी इसलिए मनसा द्वारा सेवा का रेस्पान प्रैक्टिकल रूप में कम है। जैसे शुरू शुरू में नस्तिक ला सकते हैं। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ, शार्ट जो भी कारोबार की बातें करनी तो पड़ती है, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शार्ट कर दे। मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं वो ऐसा तीर लगाते जो पक्षी तीर से धागे पाओ में पड़ता। मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो, रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक वाणी, दूसरा स्व, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ रूप।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, बीच से तो है। विश्व का राज करना है ना, और राज में उस संबंध में आना ही होगा, इसलिए संबंध संपर्क नहीं मिलती, अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। या संपर्क में आए बाजा ठीक नहीं चलाना तो है ना, दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो संबंध में आओ, जैसी कहावत है ज्यादा मीठे पार चींटियां बहुत आती हैं। इतना इसी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

से अपवित्रता से।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

Watch your life.

सुख शांति की लहर आ रही है, लेकिन कहां से आ रही है अभी

0: But you'll see. Ariel was supposed to name NATO back again.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Awesome.

vio que yo nada.

0: विजय की चैलेंज करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

亲爱的。

0: और फाइनल पेपर अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी, तो कोई भी अपने विशेषता को सदा काल का बनाना, ये आवश्यकता है, क्योंकि पेपर सदा नहीं आता है, बीच बीच में पेपर रामानुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको, तो बाप दादा दीवर पुरुषार्थियों के लिस्ट में रख, अटेंशन देते हैं, लेकिन कुछ समय दीवार, कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एकाग्र कर सकते

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: एक दिन में कितना भी बड़े दिन बड़ा मल्टी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसा रिचेस्ट
2: मुश्किल है नहीं ना कि बिंदी खिसक जाए।
1: सुरम पे तेल लगाते जाओ, यही सिखाया सबसे सहज।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

সত্যি কি রেখা? চমক রই Bye.

body.

Ciao.

श्रेष्ठ कर्म के कलम से कीजिए। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य Sheep.

ASMR. श्रेष्ठ

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Sad।

0: 이제 소시대요. 소시대요.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

What's your game?

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल और जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मानक के परेशान जाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, अबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उनकी वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है क्या होना है ही सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहीं चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम घर आपका है, डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल परिवर्तन होना है, ना विनाश नहीं, परिवर्तन होना, सब में वैराग वृद्धि उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर सब पर शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, जब बच्चों की सभा को देखते हैं तो तीन रूपों से देखते हैं, वर्तमान, स्वराज, अधिकारी। अभी भी राजे हो, लौकिक में भी बाप बच्चों को कहते हैं मेरे राजे बच्चे, राजा बच्चा। चाहे गरीब भी हो तो भी कहते हैं राजा बच्चा। लेकिन बाप वर्तमान संगम पर भी हर बच्चे

0: você.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yoko.

Ah!

Master Sarveshaktivan. At the moment.

0: essa vardagan. Sadariyadkar. Kitna bhi uncha paar ho. Paar badal ke rai ban jayenge. समय के समित परमान वरदानों को हर समय
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसा बनाया

भी बच्चे जो साथ रहे और उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते, तो ये जो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते ये स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूं ये तो सब जानते ही है, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं

Guadalupe.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: और आप सोचो, ब्रह्मांड आत्माओं की निजी संस्कार कौन से? क्रोध या सहन शक्ति कौन सा है? सहन शक्ति शांति, ये है ना? तो अवगुणों को तो सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट के अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट के संस्कार बनाओ, मेरा निजी संस्कार कौन सा है ये सदा याद रखो। वो तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया, पाप के खजाने को अपना बनाओ, रावण की चीज को संभाल के रखा है और पाप की चीज को गुम कर देते हो क्यों? रावण से प्यार है, रावण अच्छा लगता है, ये पाप अच्छा लगता है। कहेंगे तो सभी पाप अच्छा लगता है, यही कह रहे हैं ना मन में। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय के स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होती है और फिर भी कहता रहता है, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार। बाप पूछते हैं कितना प्यार है, तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा है। बाप सुन करके खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे

फिर भी बाप कहती है कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है। जब बाप कहा मेरा बाबा दिल से अगर एक बार भी बोल दिया फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही।

0: तो अच्छा नहीं है। सब हम चाहते हैं कि बराती बन के नहीं चलना, सचने बन के चलना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

accetti.

το στάκι σιχτή. Και σύμπη περκάρκη.

Cerco.

this up, me. Why you want that law? Guess I.

Hollywood.

Mondlicht.

0: परिवर्तन कर सके।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो, और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के बावजूद देखो, कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी, कार्टून शो है। अपने सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया,
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Bobby. क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प का? जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प इस व्यर्थ संकल्पों में समय पहुंच जाता है।

और आपका इस समय के प्रमाण कार्य विश्व के संदेश देने का तो व्यर्थ संकल्प को समाप्त

0: शांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा सके। बाप दादा को दुखी बच्चों को देख तरस पड़ता है। आपको भी अपने भाई बहनों को तरस तो पड़ता है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। What?

0: इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कई बच्चे सोचते हैं कि बाप दादा क्या चाहिए।

0: dich. Orba ošemi. Vyšme rádi odchádi. Koj mi bača.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

से आई है मधुबन से, तो मधुबन वाले

0: संतुष्ट करने का लक्ष्य रख।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Jack।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

happy.

not

hit him.

Chitrome. Sada. Double touch. Toi pour me. Kairaje.

که زبیو شریط گایسان.

sabí, Pepe, pero...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहा दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय

Chup chow. Jesse chow. Fessy. Manor potico. Control kar sako. इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है जहां जाओ, जब तक जाओ तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय।

0: యొక్క ఫైనల్ రిజల్ట్ కి పెలే భీ బీచ్ బీచ్ మే పేపర్ లియే జాతే తో ఇస్ विशेषता क्या करेंगे साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको एक सेकंड में स्वीट साइलेंस के अनुभूति में खो जाओ क्योंकि साइंस और साइलेंस साइंस भी अति में जा रही है उस साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: थोड़ा सा

Peace.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

Fishes, attention to apne aap apna program banao.

0: पिसी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मटक को पिसी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रहो, मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर वन बनो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? उसमें फर्क

परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे तो फिर बाप दादा भी एक शर्त डालते हैं, मंजूर है, बताए बताए। अच्छा, बाप दादा 6 मास में रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना, कुछ भी हो जाए। बाप दादा तो कहते हैं स्व परिवार से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैपन से मरना है। तो मरना भी पड़े इस जन्म राज भाग्य में जीना है, तो मंजूर है, मंजूर है टीचर्स।

0: chấp chân thật, chấp chân ta về na, किसी भी प्रकार की तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्यों का पाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए, किसके बच्चे? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे बाहर आ जाए, लेकिन बाहर को भी आप रुई बना सकते हैं। पाप के साथ अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो बाहर है वो रुई हो जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिमान आपके कंबाइंड है, समय में काम में लगाओ, कहने तक नहीं काम में लगाओ, तो सदा खुश नेमा चेहरा और दिल सदा खुश नसीब। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुश नेमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो, करे चैलेंज।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: डबल विदेशी परसेंटेज के बिना फुल बन गए तो बाप दादा चाहे भारत वाले भी अगर फुल पास हुए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा, क्या करेगा, बस रफ शाबाश दे देगा और क्या करेगा। रोज आपको अमृत वेले अपने पांव में समा दे, बड़ी बड़ी बड़ी आपको महसूस बाकी मिलेगी और साथ साथ ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ प्यार है ना बहुत, तो बाकी के साथ साथ अमृत भी तो बाकी मिलेंगे और सारा दिन क्या मिलेगा। क्या मिलेगा जैसे चित्रों में दिखाती है ना, इन्होंने श्री कृष्ण दिखा दिया आया, पानी भर गया तो क्या हुआ, सांप छत्रछाया बन गया। उन्होंने तो स्थूल बात दिखा दी लेकिन वास्तव में है रूहानी बात। तो जो रिश्ता बनेगा उसके सामने अगर कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाए। करके देखो क्यों
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Ich sehe gar nichts.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, डरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है? मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ। उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन भ्रमर भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते। माया भी सुन रही है, तो ये प्रतिज्ञा कर रही है, वो भी अपना तो आसमैच करेगी ना। लेकिन आप तो माया जीतो ना, माया जीत तब तो जगत जीत बनेंगे।

Por anestética.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सदा टीचर्स को इसी नजर से देखते हैं कि हर टीचर के फीचर्स में बाप दादा के फीचर्स दिखाई दे, फेस में ब्रह्मा बाप के फीचर्स और बरकुटी में ज्योति बिंदु के फीचर। किसी भी टीचर को देखो तो सब से यही निकले ये तो बाप समान है, ये तो ब्रह्मा बाबा जैसे लगते, ये तो शिव बाप जैसे लगते है भी और होनी है। टीचर्स आधार मूर्त है, जैसे बाप के लिए कहते हैं ब्रह्मा बाप का सदा यही स्लोगन रहा, जो कर्म मैं करूंगा वो सब करेंगे। ऐसे हर एक टीचर का यही स्लोगन सदा याद रहता है कि जो कर्म, जो बोल, जो वृत्ति, जो विधि हम करेंगे हमें देख सर्व करेंगे। बाप दादा ने सर्टिफिकेट बाप दादा तो देखते रहते हैं। क्या बकरी, ये तो बकरी हुई पहले ही है, बकरी हुए को क्या बकरी, बूटी है। आज मेहनत, हिम्मत और मेहनत में मुबारक हो। अच्छा बैठ जाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आज कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कृपया के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली प्रति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे।

0: ये सोते ही प्रसन्न हो जाएगा। अभी वो नौका भी सही होगी सनई बनने का चांस तो
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सर्वात्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे समन संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी आवे संपर्क में, संबंध में भी, कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसको और कोई खातरी नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। ये जो यहाँ भंडारे में बनती है वो नहीं, खुश कर दो तो दिल खुश करना अर्थात दिल खुश मिठाई खिलाना। खिलाएंगे उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, ना टाइम एक्स्ट्रा देना है, ना मेहनत है। शुभ भावना से दिल खुश मिठाई खिलाओ, आप भी खुश, वो भी खुश, और क्या चाहिए। तो खुश रहेंगे और खुशी देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबसे ज्यादा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

इस मोटे रूप से

Skillliste. संकल्प करते हो तो चेक।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाबू

some people

बच्चों को याद करती है, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए नहीं, एक एक बच्चा

Lena.

इस दिन को महान समझते हैं, जो बाप और बच्चों का सनबोगा

भी आगे के लिए आवाज फैलाने का कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ जिससे दुनिया वाले जागे रहे, सो नहीं जाए, जगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। वो बाप दादा आप लोगों के भाग्य के आगे उठो।

0: अभी ऐसा समय आने वाला है जो इंद्रों को याद करेंगे इसलिए आप अपना कार्य करते रहो। वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे और बाप दादा भी खुश है। कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी ले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।